0: mangai narin om ti la kan ngai thak ta kha lel byak mo na sakaniya chuti zong chu tukin kalung dum huna lengzem la kan ngai thak the te chu niya akashwani aizol a chunga puan chwa ani
1: tidam thelo shikpai turin man lelsu wandoi wang a indu khan swal wanga hiv aids kai antam zok rui lo la fim khur la hiv chu ama in om ti ro shing nun zin konga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mi che ani e
2: मार्केट के बारे में क्या
3: परफॉर्मेंस का बोलो
2: नहीं तो फ्यूचर
3: मार्केट ट्रेंड है
2: सुनने में आएगी
4: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
3: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
3: ये दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
7: हा?
8: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
7: सॉरी
8: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
7: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
8: मतलब
7: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

0: kom a hen ML khan thar te lak lu ani angati a session top ni a UCC bill hi house a put lu ani angati bok Union Cabinet Committee on Economic Affairs chuan kharif crop zor hun sang ni samni pro samni pasiri atan thai thar shalna pui tur minimum support price ti punaremti Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw chuan New Delhi a Union Cabinet an thut zo a chanchumi te komin lo nei tu ten an thai thar man man taka an ral theina sarkar chuan MSP hi ti puna relati a kharif season chung hian sarkar na tum tur chu cheng vebel chenuai ni sing ruka ni thu soya thai thar metric ton noi zare somni pali le man an tum thu soi ani
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया
2: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन
0: Nini o BRICS Foreign Ministers Meeting to Vena New Delhi at Chanani Don. And to call me External Affairs Minister Dr. Jason Kerson Kai Shui Dona. BRICS Foreign Minister Tele Member Let Hopui Ramachangin, Palai Chanem Takan Kalkom Dona, Prime Minister Narendra Modi and Kom Don Bok Ani. Chanchin Tarsherti Top Nan Tang Pui. Chief Minister Pulal Oman Mizoram Le Assam State in Kara Ilung Rona Let Hona Cha Om Tebe Se Tua Soi. Supply Department and Kumin Fur Chungatana, Mizoram Mamo Turbu Fai Che Colony to Antia, Supply Center Shang Shang Hun Sum Serebu Fai Mamo Davik to Anit Hun Soi. Assam Sarkar Chuan Tun Thani Sam Nipurukian State Assembly, Uniform Civil Court, Bill Apulu Don, Union Cabinet Committee on Economic Affairs Suan Karif Krop, Zor Hun Sang Nisam Nipuruk Sam Nipasiriatan, Kai Tarshan Napui Tur, Minimum Support Price, Tipunaremti. Tutizong Chu Tantin Tarkan Puan Te Chu, Ani.

नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7. तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे. और आपके साथ हिंदी के खंड पे जुड़ी है आप सभी की दोस्त RJ वियली. और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? आप सभी अच्छे से सोए होंगे और आज की सुबह आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, पाया होगा. और आज के इस दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की होगी. अगर नहीं की तो जल्दी कर लीजिए. यस, और अपने FM जो 100.7 को जल्दी से सुनिए हमें, क्योंकि FM जो 100.7 पर आपसे बातें करने के लिए, आपको हिंदी के गीत सुनाने के लिए हाजिर है आप सभी की दोस्त RJ वियली. यस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने काम में जाने के लिए भी आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे. यस, और हम पूरी कोशिश करेंगे आज का दिन आप सभी के लिए यूं ही अच्छे से बीते. तो चलिए, प्यार भरे बातें हम करते रहेंगे. फिलहाल अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, कुणाल गांजावाला की आवाज में गाया गीत, बेबसी दर्द का आलम, मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

देश के लिए और से जितियान एक हाय एक हाय हुन मन नो अमले रंदे बकनी ओले नंग बोले ओमेगा सांग दे हियान तो ना आरजे ड्यूटी अंगा शुसेल ना चानेन हुन मन नो अमले दूसक नहीं तान इप्ले दूर दे गन पनी तान लियाओ लियाओ निले नो अमले रंदे बकनी ओमेगा सांग दे या जेलु तुखियान Chuan, meng moi te hian, vanla namaste, duty nuam le, aglangi, parpari pu le, good boy, tan, aronti pokani ole, chuan, meridos, zam hian, arjavil namaste, suprabhat, yes, abgobi namaste, zam suprabhat, and itun hun chatak, iman te nan, le ina kina hun, po kuanun, ompuina le, gaishwaina, itanzil te nan, dusagna itan galane, vial ton bak chu karon lan man kher pokaring lawa tlang taka duty theina du sakna kala na che oron ti dei me ni zam hen ngati nge zam bazar la michael le don mi ale ma se pe lawe tlang de win na khalo tok zil donia o par par pu hian a je vial che bai le za ti le tur kha tangwal bi kung te ama tlang a mission veng omega sang te ang good boy te lawai kha ka ta na ron ti pokani ओले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को हमें प्यार भरे संदेश देकर विश करने के लिए बातें करने के लिए तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी आप सभी को सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में गाया शुक्राना अल्लाह बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को अभी जो आप सभी के लिए हमने पेश किया था, शुक्राना अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू ने ही सोनू निगम और श्रेया घोषाल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। यस, तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर पारिपो पुहिया नार्जेवियल से पहले इजाइतिर ले तुर खा तंगवा वी कुंग ते आमा थुआ निशन वेंग ओमेगा सांग ते आ गुड बॉय ते लोंगे खा कता न रोन ती बोक अनी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह जब आपका संदेश हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। और यस, आज भी आप जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। और अभी आप अपने काम के लिए जा रहे होंगे शायद, और गाड़ी बाइक स्कूटी वगैरह वगैरह चला रहे होंगे, तो आप ध्यान से चलाइएगा, ठीक है। यस, और मोटर दिन लो खल नि चुआन इन्हा लम्पन लम्पंग ते पना इन ओ इन इन कल मे कनि चुआन ओ फिर खोर दा विन मोटर देखा खल उलमो मन मो तो तुत लो उला। और हम नहीं चाहते कि यस आपको कुछ एक्सीडेंट हो, ठीक है। तो चलिए, आपके इस सुबह को हम हसीन बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, मतलब अच्छा वाला सुबह बनाते हैं। सुनाना चाहूंगी आप सभी को बहारा, श्रेया घोषाल की आवाज में गाया मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को श्रेया घोषाल के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत बहारा, यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को सोनू निगम की आवाज में गाया गीत, यस, जब से तेरी नैना, यस, ये गीत मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है आप सभी को भी ये गीत जरूर पसंद आएगा। और यहाँ पर सीजित ह्यान सीजित मैसेज रोथन का एक हाई एक हाई हुन मन नॉमले दिखा कचियार वेरिंग सिया सिया लाओ इन मिन रोन सोई वेला का एस एम एस पोट सियार एन सियार एन एन वे द लो मो कथे हिल हर तो विया वांग दे मिन रोन दि वेला फेर लो खोप मै ओ कचियार चियांग लु तुक इदुले जामका बजोते kungte hian a jomom vi el ka u jil zami ai chuan par pari po hi a mel a chazo kania lo don bia wang che a chu la ni chuan restaurant a po a chi the che o ron ti ve la ni min chi tu hi ni ba in ban tam to tak em chuan दुर्गे जी की तरफ से संदेश है। दुर्गे जी लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग आरजे, नमस्कार, वेरी नाइस सॉन्ग, यस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गे जी आपके इस संदेश के लिए और हमें संदेश भेजने के लिए। और लिसनर्स दुर्गे नागरपुर, यस, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गे जी आपके संदेश के लिए। और फिटनेस बॉय की तरफ से संदेश है, फिटनेस बॉय हियान बोस जे मसी, आपको भी जे मसी नीले नुआम ओ ओले नंग पोले 04201 सेंशी बारी तान ल्याओ ल्याओ कहलाने अरोन त्यानी अब लो मो वे इरोन सुक दोन इरोन सुक ती नानी मो ट्वांग दो विन जिन कोंग जो दोन निया ओ और दुर्गे जी आप और आपके दोस्तों के लिए ये जो अगला गीत मैं पेश करने वाली हूँ आप सभी के लिए मैं सुनाना चाहूंगी। सुनते हैं जब से तेरे नैना मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, आप सभी को शान की आवाज में गाया गीत जब से तेरी नैना मेरी नैनों से आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। जब आंख आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार किया जाता है तो सब कुछ पता चल जाता है ना दोस्तों। आंखों ही आंखों में सब कुछ पता चल जाता है। अगर आप मुंह से कहने के लिए अगर आप शर्माएंगे ना, तो आंख हमारे ये आंखें है ना, सब कुछ कह देती है। ठीक है और यहाँ पर संदेश आया है, ओ सी जिते हियान कशे लाओ लोम तेरों दिव्यल नी कोई लाओ बॉक इश रिंग स्वाल व्याओ लाओ मैं ते ओ चुआन कमान चुआन रोन लो चे के तुम आंग ओ इला रोन तिजुई मासे के थू लाओ थे लुटु का ओ चुआन चल चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी मेरे आप सभी दोस्तों को, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

local de cru. local de cru y local lo ve. Or Durge ji likhte hain ki aaj ka program bahut acha lag raha hai, bachate raho. Yes, bahut bahut shukriya. RJ sister, next song dedicated my friends Hitendra Das and family. Yes, bahut bahut shukriya Durgesh ji. Aur Durgesh ji ne geet farmaish ki hai Jati Hu Main. Yes, main apne playlist mein dhoondti hu, agar hame milega to main aapke liye sunaungi. Theek hai, hum sunenge, zarur sunenge. To chaliye filhal sunte hain. हमारे पास केवल 5 मिनट रह गए हैं दोस्तों. तो दुर्गेश जी, आपका जो फरमाइश गीत है ना, नेक्स्ट खंड में हम सुनेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास होगा तो ये रहेगा इस खंड का आखिरी गीत दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं. तो हमारा समय केवल 9:20 तक है, इसलिए ये गीत इस खंड का आखिरी गीत होगा. और मैं वापस आऊंगी 10:40 पर, यानी 10:40 पर दोस्तों. और अगले खंड पर वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए आपकी आरजे सासानी, यस, हाजिर होगी. और मैं इस गीत के साथ चलूंगी कहीं और दूर नहीं बस आपके पास ही रहूंगी दोस्तों, ठीक है. तो चलिए सुनते हैं इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से. ये सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा. यस, तो ये गीत, आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम. और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीतता रहे. और हमें आपके संदेशों का, यस, इंतजार FM 100.7 पर होता रहेगा दोस्तों, ठीक है. तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के कंठ पे। और आप सभी सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने काम में जाने के लिए, काम करने के लिए आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यस, तो हम चाहते हैं कि आपका समय दिन अच्छे से गुजरे, यही दुआ करते हैं हम आप सभी के लिए। और जब भी आपको मौका मिलेगा ना दोस्तों, हमसे बातें करने के लिए, हम आप सभी का इंतजार करते रहेंगे FM 100.7 पर दोस्तों। यस, और आप सभी के साथ प्यार भरी बातें करने के लिए मैं दोबारा हाजिर हूँ हिंदी के खंड और हिंदी गीत के साथ दोस्तों। तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाया गीत जिंदगी कुछ तो बता। मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाया गीत जिंदगी कुछ तो बता आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे फर्स्ट सेगमेंट पर मेरे दोस्त अजामा ने कहा, मुझसे कहा था कि आरजेबीएल आप मेरे पास वक्त नहीं होगा आपको संदेश भेजने के लिए, लेकिन जब मैंने मतलब मैसेज खोला तो जामा टाइप में करोन लगनी मो कमन तो दो लाजो देखा थी रो दिक्वाल वे लामा से है मैसेज रोन थोन ले दोन थाउ इन लंग सी आ जामा ही मो फिल छीन दे मैं मामो थिया नार्जे वील को आदुआई चन नुआम लुटुक इमो प्यार तो होना ही था फिल्म टाइटल ट्रैक का इन एम थी गजो तंग से कतिया मासे निमिन आ इरोन प्ले चत आ कलोम जिया चुमो कथलंगम लौछीना कंगाई थचा ले ए प्यार तो होना ही था ओ ओले कंगाई थंदोनिया ओ हिमिजो अहियान चुआन कोंगते अहियान अर्जमो वीएल इउंगे अमो संगे कउ जेलजामी इदुबेर कसई बेलोए आ कशिल कशिल दोन लाउजे कदुवे कनिमे जान जाम हियान आरजेबीएल इ सेगमेंट मसा आ खान पु के वाला खान एंगतिन मो अतिया कमन लो नरेम चांगा अला इन इबुला रोन लेना तुमो खा पु के वाला खान हे ही लो शमे मे ते से हे कोवेल एंग अला मुदु ते अनि ngai chuan min chai kol mai mai su se enge ka ti thai an la shem me yang o kas kasahel ho nat sia an lo an lo she ani next song ke walata ni lavin itan chau aron tyani jama hian ओ जाम का चार डी गेम का सहेल हाउ नज़िया अन लाउशिया अनी अधिक लाउ तो जाम इतिल ज़्यादा हारों दिखले रो जान मतलब आगे फाना यान आरजेबीएल कंगाई थावे रिंग चे ओ फिल्टे जंग तो इन मासे का एक्टिव मन लो ड्राइवर नी पा चुआन ओ रन त्यानी ए पै लो रे रिंग कन लोम लो तो के ओ चुआन ओ गुड बॉय हियान ओ एक पा नी सेकंड के खल रे त्यांग तो चलिए फिलहाल सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत सीने में दिल दिल में धड़कन अलका याग्निक और कुमार सानू नहीं सोनू निगम की आवाज़ में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और मैं इंतज़ार करूंगी मेरे दोस्त जाम का संदेश यस जाम कलो

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को सीने में दिल दिल में धड़कन, यस आप सभी को पसंद आया होगा। और चलिए अगले गीत की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, यस मामूनी की तरफ से जो फरमाइश की था, प्यार तो होना ही था। यस मैं सुनाना चाहूंगी, लेकिन लेकिन इस गीत से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश को पढ़ना चाहूंगी दोस्तों। और यहाँ पर और जामा मैसेज नितिन मी खामो कसा है हाउ ओ ग्रो एंगे कति थे अन अन अनलाशे लाओ अनलाशे मई आंग कसा है हाउ कपे कपे नजिया अनशे लाओ तीन नी ती जो खा लाओ नी मोम चुआन कस्याम रेम तो ए मन मो ने चुआन चेत स्वाल रेम रूम मई लोम बॉय था ख्यान के बाला बांग वे करों दिया नी जामे ख्यान चुआन मामूनी हिया नर्जे वेल कन भी पाते वो

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अजनबी गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, लता मंगेशकर ने ही आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में गाया गीत अजनबी मुझको पता, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और यस, मैं अपने मूड को थोड़ा ऑन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका मूड हमेशा ऑन रहे। यस, और जा महिया ना जब एल माम हुनी रम लोड खा ngoi chip ngoi chip chang ro se ama ani kha ler mu chuak bul pui ber chu ron tia ni ma mun o shalo shamo। और तो चलिए सुनते हैं अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। यस, आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 और हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को हिंदी के गीत सुनकर मेरे साथ अच्छा लग रहा होगा और आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा। यस, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज लाइव शो होगा हमारे पेज और इंडिया FB के हमारे पेज और इंडिया रेडियो आइजोल पर हमारी वेस्टर्न म्यूजिक आरजे सासांगी के खंड पे यस लाइव शो होगा। आप सभी ज्वाइन करिएगा दोस्तों, साथ दीजिएगा, ढेर सारे कमेंट भेजना उन्हें, ठीक है। यस, और मामूली आरजे वी अल्जा मखान अलेर जियाही अथुप सेंग थे तो लो थु दिखिचु अथुम या लवनिया अखफक जेल चुआन पार पारी पुहियान आरजे वी एल मामूली खान aswe dikhop mai meng moi te tan hian rin ombur ania noi pa so hian aje vial jel za matan chuan ti ve lawang o aler mel e mai tu emo sei danin noi pa so hian ron diani zu zam ler an ti lom le mai chomo kazak kazak kazak e min ti zak o fiam tu ni ka o ke chani ler ke timya lo o jam I ler mya lo nia good boy hian arjewan lal ka sms alo lut lo em mi ichiar kala ka ichiar ka ngai thafu lo em mi eron dia hey arjetete iron ti khan arjetete tura mo ka lo tya ka lo chhar kan vel lo o chuan alo mom lu tuke o chuan o maba shukriya good boy hey kalo chara I message thum deu deu ron thon te hi o chuan ang po ina te twa ta kai lo tho thei zel nan do sakna kan han se o chuan se je te hian zam du zel a mi in so ya aron te ani se je te hian zam du zel a o zam lawin soi fia te o hei le ran ti sup sup mai bok si che ai tinge kan ti don ole chuan filhal sunte hai hum tum bahut hi khoobsurat geet Alka Yagnik aur Babul Supriyo ki awaaz mein meri taraf se aap sabhi ke naam

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हम तुम बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब मैं इस गीत के साथ आप सभी को इस खंड के लिए अलविदा कहना चाहूँगी। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे पेश किए गए गीत आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और यहाँ पर गुड बॉय हियान आर्जवानल जिलजा मजु अनवन का अपना सोक सोक वे इना आ इन पे आ इरिन ओमा मिदंग तान मल सोमना इनी क छुआंग तक जेट से ओ इफेल तक जेट ने मल सोमना दोंग से लंग से छुन लम इचंग छिन लो वा अजिया अलोम केनी छु 24 आवर्स मे पोनी लो 7 डेज एंड नाइट कन तलंग पर अनिया ओ मासे कन ऑफ rei ve thunga aron tani good boy hian ole chan tang da win ilo thok zen don ya oh good boy bahut bahut shukriya aapke sandesh ke liye aur hame sunne ke liye hamara saath dene ke liye aur mujhe pyar dene ke liye aapke sandesh ke zariye aur bikung te hian jilal zama bula chan ma honi po a om he he thailo ameng ameng da vazel ameng da vazel ameng zeyasin aron tani kung tia hian har deu deu kha min lo thon chin su rjb li hi mo ol sam deu deu kha min lo thon chin ru chan nam deu deu ang chi kha kung te isha em chan za ma yan rjb li mo eng e eng te po azerin do lo khophia la a ara atam chuan do tu ama mo ani kati ama mo ani khatiro dite kung ra nem deu pon do tu te lo chuan atliak a atliak emo atliak emo lutuk mai ma bak ani kha thei kung ra nem deu ang nen khan ka in ngai dai mai a aron tia ni o तो चलिए फिलहाल एक पूछनी से जाम आपके संदेश को ना मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिलहाल मैं आप सभी को ये आखिरी गीत प्यार तो होना ही था से इस खंड के लिए अलविदा कहना चाहूँगी और मैं वापस आऊँगी बहुत ही नए मूड के साथ। यस, 12:40 पर, ठीक है? तो इसी तरह

알아서 내들의 얘가 되게 순대래나. और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों मुझे संदेश भेजने के लिए, मेरा साथ देने के लिए. तो चलिए, ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आपके साथ हिंदी के खंड पर जुड़ी हैं आप सभी के दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे।

और आप सभी का समय भी अच्छे से बीत रहा होगा, और आपके समय को हम और भी अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से बिताने के लिए हम हाजिर हैं हिंदी के गीतों के साथ। और दिन के 12 बज चुके हैं, 1 बजने वाला है, और हमारा ये जो समय है, ये जो खंड है ना दोस्तों, 1:20 तक का खंड है दोस्तों। यस, और मुझे आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार रहेगा। यस जॉन xia nuam deu de wang chi khan min lao thon dang a o gan xiar fu do rang a ila tro तो चलिए आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा प्यारे दोस्तों, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से हमारे आज के हिंदी के तीसरे खंड पे दोस्तों। और आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा आरजे सांग सांगी के साथ उनके लाइव शो प्रोग्राम पर दोस्तों। यस, और हम भी उम्मीद करते हैं कि दिन में हिंदी के सेगमेंट पर, लाइव शो प्रोग्राम पर हम जल्दी हाजिर हो आपके लिए दोस्तों। यस, मुझे भी आप सभी से मिलने का बेहद बेसब्री से यस इंतजार है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से, दिल में दर्द सा जगह है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीदें आप सभी को मेरे साथ दिल में दर्द सा जगा है। कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मेरे दोस्त मामुनी की तरफ से संदेश आया है और उन्होंने लिखा है कि आर जे वी एल चुनु लम अनी आ के माही का चुनु

मेरे ख्यालों की मलिका बहुत ही खूबसूरत गीत अभिजीत चक्रवर्ती की आवाज़ में गाया। गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, मुझे भी बहुत पसंद आया है। यस, हमारी दोस्त मामूनी का फरमाइश गीत बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होता है। यस, और हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह मामूनी की तरह आप भी हमसे फरमाइश गीत पेश कर सकते हैं। आप फरमाइश कर सकते हैं जो आपको सुनने का मन करता हो, और आपके पास ऐसे कुछ गीत हैं तो आप ज़रूर पेश कीजिएगा, फरमाइश कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जामा की तरफ से संदेश आया है। जामा यानाजेवी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट सॉन्ग इतान ले मामुनी रमलो तान सियावुम थोरी।

kan hlan ange mahmuni mahmuni mahmun achinang lo ngoi bo pui mai mai ro nakina thil chadeu gati sakang che kan kan pani chau sha chi alom a jeveli tel lovin thuru kani kha aron tia ni za ma hian ei mahmuni messenger on thlenga engtin nge o aron ti kan chiar tiang o zam chuan और ओ चार लाओ मैं यंग ने कि ना पहले ये गीत सुनते हैं फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगी आपके संदेश को और संदेश यस गीत है जानती हूँ मैं जल्दी है क्या बहुत ही खूबसूरत गीत चलिए सुनते हैं हमारी तरफ से आप सभी के लिए

मीका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और ये गीत ना मैंने इसलिए पेश किया है क्योंकि हमारे जो पहले के खंड में ना दोस्तों दुर्गेश जी ने फरमाइश की थी, तो हमारे पास वक्त नहीं होने के कारण हम उन्हें नहीं सुना पाए। तो चलिए, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। और अगला गीत सुनाने से पहले माहमुनिख्यान जाम चुंगचांग लो सेखा कन हन छियार लो कांग ओ जचिन आरजेवीएल इमो जामा केटीपी कॉन्फ्रेंस अलोकल KGP conference local zu car in an local amo nula kha an tam si a kom ve ti po a she chang to lo ka lo to phan lo che a ti mak ain me top nuam kha ti om nai me tro me chi an tam lu tu kan ti me chu tro chuan elze sai lo hian lalva na moi lu tu green talk in karak karak ka play a moi dup dup khop mai ole dikhan to main aasha karti hu ki aap sabhi ka din acche se beet raha hoga। aur chaliye hindi ke bahut hi khoobsurat geet ke saath aap sabhi ke

0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इश्क हुआ, कैसे हुआ? यस, विभा शर्मा और उदित नारायण के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत. यस, और तो चलिए, हमारा समय भी खत्म होने वाला है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे आपके भेजे के संदेश की तरफ. और जा महियाना जीवी एलमा मोनी रमलोद खान अथीक थू सियाद वांगनी खा रोंतुम ओटो तुम रेंग कनी आ अमा खान इरोन कलपुई नुला हौने मिन रोंतलो इतुम चुआन मिन तलो लो लो लो मेरु अति अनी खा ठीक थु छिलु तुक मे साला रोन त्यानी नि ने सो बॉक्सिया बा ललवान हिंदी ला कदुबेर अनि खा अरोन ती अनि एलजे साइलो हियाना वन लो मम कवन प्ले फु चियांग एम. तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं, शान की आवाज में, वो पहली बार मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए.

तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समय इतना जल्दी चले जाता है ना, क्या बताएं आपको। हम समय के बारे में सोचते भी नहीं है और समय इतना जल्दी चला जाता है ना दोस्तों, पता भी नहीं चलता है हमें। तो इस खंड के लिए हमारा समय खत्म होने वाला है। हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर माहमुनी ह्यान आरजे वी एल जाम लका ह्यान कथिक थू कति से पे इलाओ अरोंदी नी ओ जाम ओ जवान जाम तो मुनि ती दानी ला नि मो मैसेज रंधना डिलीट ले मक जेल मो मिदंग छियार खा फलो छिने मो फिटनेस बॉय अंग खान फिटनेस बॉय तो डिलीट ले मक मक जेल तो चलिए, अब आप सभी को आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है इस खंड के लिए, और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर दोस्तों 2:05 पर, यानी शायद तो मिलते हैं 2:05 पर पूरे 2:30 तक, 2:30 तक आज के हमारे आखिरी हिंदी के आखिरी खंड को लेकर मैं हाजिर होंगी दोबारा, और मैं आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करूंगी दोबारा दोस्तों। जिस तरह आप हमें संदेश भेजते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, स्पेशली मुझे, और मुझे आप सभी से बातें करने का बहुत बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप हमेशा FM से 100.7 के साथ जुड़िए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, गीत को महसूस कीजिए दोस्तों। जिंदगी ना पूरे बिजी और भीड़ हेक्टिक लाइफ से बीती हुई है और जुड़ी हुई है दोस्तों, इसलिए अपने इस हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा फ्री होके FM से 100.7 को सुनते रहिए। हमारे साथ जुड़ते रहे ना और प्यार भरे बातें करते रहे ना दोस्तों। तो चलिए जामते माहुते अंजत साइलाओ मेंग मोइते ते, आप सभी प्यारे दोस्तों को इस खंड में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अगली अगला गीत अपन जवान से मैं आप सभी से सुनाकर विदा लेना चाहूंगी। तो मिलते हैं 2:05

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वेली की तरफ से. और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOY 100.7. और यस, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे दोस्तों. और हमें उम्मीद है, मुझे यस आरजे वेली को उम्मीद है कि आप सभी को मेरे साथ दोबारा हिंदी के गीत आप सभी जरूर पसंद करेंगे और आप सभी को अच्छा लगेगा दोस्तों. यस, और ये खंड है आज के लिए, हमारे ये आखिरी खंड. और

कहना तो नहीं चाहते दोस्तों कि लेकिन कहना पड़ता है आप सभी से कि ये खंड आज का हमारा आखिरी खंड है और आप सभी को शुरू से लेकर अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमें FM 100.7 को जो चुपचाप सुन रहे हैं उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए ये इस खंड का ये जो सबसे पहला गीत छाया है जो दिल पे क्या नशा, बहुत ही खूबसूरत गीत कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज में गाए गीत मैं पेश करना चाहूंगी आप सभी दोस्तों के लिए।

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ यस छाया है जो दिल पे क्या नशा शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाएगी, तो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे जल्दी से अपने अगले गीत की

तरफ, लेकिन यहाँ पर गीत सुनाने से पहले गुड बॉय की तरफ से संदेश है. उन्होंने लिखा है आज वानलाल छहर दो कन लाओ थोन ले दोन एम दोन लाओ नो थैंक्स अनि मै कन लाओ लो मचे खल मालूम वे दो एम फिल फिल फिल दे खा अहो हा नल नलेम कशे लाओ ले लो हो लाओ देविन कशिया चुआन जा महियान आजेबियल तुन हुना इस सिग्नेचर म्यूजिक ही मोय पोकति लवे आ जिंगलम दारिया लेमित सोमली बोरवेला चुआन अमोय कति असिन ले नेक्स्ट सॉन्ग इतान सौला तकिन ओ रंत्यानी मेरे दोस्त जिलाजामी की तरफ से बहुत ही प्यार भरा संदेश मुझे मिला है और इसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं जाम को मेरे अपने दोस्त जामको में बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी इस तरह हमारा साथ हमेशा देने के लिए, मुझे संदेश भेजने के लिए प्यार भरा संदेश. और मैं चाहती हूं कि इनका दिन, यस जाम ओ, आपका समय दिन हमेशा खुशियां और आनंद से भरता रहे. और आप कभी एफएम 100.7 को मत छोड़ना, ठीक है? यस, तो चलिए सुनते हैं अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, स्पेशली मेरे दोस्त जाम के लिए. शाम भी खूब है, सुनाना चाहूंगी. और यस, गुड बॉय भी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये गीत मैं पेश करना चाहूंगी. तो चलिए सुनते हैं आप सभी के लिए मेरी तरफ से शाम भी खूब है. यस, कुमार सानू और अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गाएगी आप सभी के नाम.

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को शाम भी खूब है। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। और तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी, चुपके से कोई आएगा। चुपके से कौन आएगा? चुपके से कोई आने वाला होगा तो अच्छा होगा, लेकिन क्या पता कोई आने वाला है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर सीज़ेत ह्यान वाइनु ओटलियांग फ्याफाय तक मै अनहन जाय वोंग वोंग मै हिचुआन मिन लौ नोल तो तुते पो मिन मिन लौ नोल तुते पो मिन ngai tir don rum rum zel दाई मै चीना तू इनगे लौ नोल वे से आ जरा हमें भी तो बताओ सीज़ेत नोल इन लौ ओम वे नी मो वन खोंग ऐ तक से एम ओ अनोल तू जे चु आ एंगे ई इ ते गन त्यांग आ स्वा व्याओ न्यांग द्रो मिचा अनोल चु गन हो ले मे कुंग ते ह्यान आ शो मो वी एल यू ही अवर रे वे इंगा येम गउ जामा आ यिन इंगाई द्रो कशिनांग कुंते सोय हाउ थाय ए मै अरे लो आइन ति रे मै मै नि अर गो रेंगे मि लो गाई था ओ चुतांग बेल चो नि मि लो मेसेज लो मै मै लो और जाते जाते हमारे आखिरी खंड में अमोस की तरफ से संदेश आया है। हमें लगा था कि वे हमें संदेश नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी उनका संदेश आया है और उन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून खूबसूरत आवाज वाली आरजेवीएल, बहुत बहुत शुक्रिया अमोस जी। और मूवी का नाम एनिमल, सॉन्ग पहले भी में, सिंगर विशाल मिश्रा हिलाही प्ले लिजा ओम चुआन माहुनी जा मले नंगमा तान रोन प्ले अंग से ओ रोन रोन्थन तोय फेल खोप मई अमोस सहियान ओले। तो चलिए फिलहाल मैं अमोस का फरमाइश गीत ढूंढती हूँ अपनी प्लेलिस्ट में, तब तक इस गीत का हम आनंद लेते हैं, चुपके से कोई आएगा। यस, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

पर दोस्त, उम्मीद है आप सभी को ये गीत चुपके से कोई आएगा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाएंगे, तो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अब दोस्तों, आप सभी को इस खंड के लिए आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है। यस, और इसके बाद मैं आप सभी से अलविदा कहूंगी और जल्द ही मैं वापस आऊंगी दोबारा FM Saoy 100.7 पर। और यहाँ पर सीजितियान मिछाते इरोंती आ एक दिन ये कमिंग पुम इशा थया रोंती दाय में या मिछाते इमिंग ती नमो सीजित जलन जा महियान मेरे दोस्त जामा ने लिखा है कि आज भी एल सीजित दिन होना इला ओम वेलो खा पुजाई माने इनान का यान का ही अमोई कंती Next song, Puzai Mali, Uchi Piangur Tata Pa Mei Lavin, Oh, Vi Kung, Ler Ko Tsu Mei Dei Ang. Masi Mei Pa La Wang Ka Uchi Piangka, Ngur Tata Pa Ka Tsu Lau Mei Ta La, Poi Ka Tila Masi Kung Te Ka Tsu Mei Chin La Wang, Oh, Zam. Kama Ngai Tata Nika, Oh, Tuan. Or sis the hen run type make a massacan chairman to don and me or minute nga second nato a to up me sunana chahungi up sabi pyare dosto ko amos ke taraf se jo farmaish ki the pehle bhi me tumse mila tha bahut hi khoobsurat geet vishal mishra ke awaaz mein gaya geet se me aap sabhi se vida lena chahungi yes और दोस्तों सिद्धिया नीले ट्रॉट किनले हुन मनम जिजेले रंतानी ओले नंगनी बो इन सवाई खान ओ इंदु ओमसी इन मेल छ लोम बॉक्सी इन फेल लोम बॉक्सी थुले लाते इन थ्याम बॉक्सी ओ जान अनोम छिन के जान नाम के तिछिना और nangni pon namin ti vega beseya on or fm zone 100.7 a hian in tiklai boin in kom turin o in kom te turin kan nom reng ani ti kamilo sha sakzel bokula tike to chaliye aap se baatein karke aapko ki sunate hue hame bahut acha lagta hai jab aap aur aap jab farmaish geet pesh karte hain to use sunane ke liye bhi hame bahut acha lagta hai dosto यस तो उसी तरह अमोस की तरफ से फरमाइश गीत पहले भी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और आज जिन्होंने भी हमें संदेश भेजे उन सभी दोस्तों को प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दोस्तों और जब तक हम नहीं मिलेंगे आप सभी अपना ख्याल रखना ठीक है यस आप कहीं भी जाएंगे तो भी आप सावधानी से रहना ठीक है यस अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो भी आप ध्यान से चलाइएगा ठीक है यस इन तो कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बस इतना ही कहूंगी दोस्तों हमेशा खुश रहिएगा यस और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी FM 100.7 पर तो जब हम वापस आएंगे ना तो आप सभी को हाजिर होना है ठीक है यस आपकी दोस्त अर्जवियली इस आखिरी खंड के साथ अलविदा कहना चाहेगी तो अर्जवियली की तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों को दिल से बाय बाय टेक केयर बाय गुड ऑल

0: अब संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति तथा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
3: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया

0: करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Election Commission today announced Special Intensive Division SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. India has asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
2: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
1: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Sayed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al Marar and Ronald Lamola from South Africa, among others. India and the UAE are set to take their already robust partnership to the next level as Prime Minister Narendra Modi meets UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi tomorrow. The visit comes amid growing high-level engagement between the two countries. The UAE President had visited

आकाशवाणी आइजोल के FM 100.7 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे मलसूम चौहान। आपने अभी आरजे श्वाई के साथ अपना वक्त बिताया था और अब हमारे साथ हिंदी फिल्म की सुनने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। और इस सेगमेंट को हम शुरू करेंगे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी के गीत के साथ। और ये गीत खास करके हम पीसी दरवत्सा वासी फिर वेंग फुटबॉल क्लब के प्लेयर के लिए

जाने ये क्या हुआ, ये गीत केके की आवाज में आपने सुना, और मूवी था कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। और अगला गीत जो हम सुनने वाले, ये दरखास्त गीत है फ्रॉम मूवी शिवाय।

तेरा चेहरा सनम तेरी कसम मूवी से था, और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं गब्बर इज बैक मूवी का गीत है, तेरी मेरी कहानी। और ये गीत हम अपने बहुत ही पुराने दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड्स के लिए डेडिकेट करेंगे, एलमी और टीपी के लिए। शायद वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन आशा करते हैं कि ये गीत उन्हें पसंद आए। और ये है तेरी मेरी कहानी।

तेरी मेरी कहानी जबर इज बैक मूवी का गीत था और यहाँ हम अलग गीत जो सुनेंगे ये अरिजीत सिंह की आवाज में होगी। हमारी अधूरी कहानी मूवी का टाइटल ट्रैक है ये, हमारी अधूरी कहानी।

आकाशवाणी आइजोर के FM जो 100.7 पर आप सभी का हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। ये खंड हमारा आधे घंटे का रहेगा और हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ कार्यक्रम के अंत तक देते रहेंगे। और चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे विकी वायरस मूवी के गीत।

आंखों ही आंखों ने काम की वायरस से और यहाँ आपके ऐसे मिस मिले हैं वी कूते ऐसे और त्यार सका ऐसे मैं मैं सापो हने रोंट होन तो आ आज ये मैं जाने तो नाम दे विल मन अब तो रोंट आम ऐसे करो से मन चा चा से आज जाने तून आ हने रोंट होन ले आज ये उबोंग इतना चाहो तून लाइन चौक डेंजिन लाउट लट मैं ओ जाने यहाँ दुर्गेश नागमपुरी से भी मिला है और इन्होंने लिखा है गुड इवनिंग आजी नमस्कार जी आपको भी नमस्कार वेरी नाइस सॉन्ग थैंक यू लिसनर्स है दुर्गेश नागमपुरे राधेश्याम नागमपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम्बाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से ग्राम जसवाड़ी डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश से okay, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए और अगला गीत जो हम सुनने वाले ये रांझणा मूवी का गीत है नजर लाएं

राजा ना मूवी का गीत जो आपने सुना वो था नजर लाए, और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये तमाशा मूवी का गीत है अगर तुम साथ हो, और ये गीत हम स्पेशल डेडिकेशन करेंगे 7 दिन प्रिया के लिए, एडेंथर सेकेंडरी स्कूल के ये हेडमास्टर हैं, ये उनके लिए जाता है। तो चलिए सुनते हैं अगर तुम साथ हो।

अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी से था, और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ये पाठशाला मूवी से है ऐ खुदा। और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे एफएम जो और सुनने वालों के लिए हम डेडिकेट करना चाहते हैं। पता नहीं आप सभी अभी क्या कर रहे होंगे, एनीवेज जो भी कुछ कर रहे हो, चलिए इस गीत को फिर से सुन लेते हैं।

खुदा की गीत पाशारा मूवी से था। और दोस्तों यहाँ अब हमारे जाने का समय आ गया, क्योंकि फिर आप सभी 8:30 बजे से आज ये पूजा के साथ हम लोग वक्त बिताने वाले हैं। और लगे कि सुनने वाले ये रिफ्यूजी मूवी का गीत है ऐसा लगता है, और हम वापस लौटेंगे 10 बजे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा लगता है।

आकाशवाणी एजो के FM 100.7 पर आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे मासूम तवांगी। आपने अभी आरजे पीते के साथ अपना वक्त बिताया था और ये आज का हमारा आखिरी खंड होता है। और आधे घंटे के लिए आप फिर से हिंदी मूवी के मस्त मस्त गीत सुनने के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। और हम आशा करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम के अंत तक साथ देते रहेंगे। और चलिए, इस खंड को हम शुरू करेंगे मदर 2 मूवी के साथ, और ये है

मदर टू मूवी का गीत जो आप सभी सुन रहे हैं वो है फिर मोहब्बत, और यहाँ में मोइते ऐसे हमें यहाँ संदेश मिला है, और इन्होंने लिखा है और ये है केकी की आवाज में यारो।

यारो, आपने केके की आवाज में सुनी और अगला ये जो हम सुनने वाले हैं ये तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग है और ये गीत हम डेडिकेट करना चाहेंगे पीसी लरत सांग सीपीआर वेंक्लूड फुटबॉल क्लब के प्लेयर के लिए और कल उनका फाइनल मैच है तो हम लाइक विश यू ऑल द बेस्ट और तो चलिए सुनते हैं तुम मिले।

आप सभी तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक सॉन्ग तुम मिले सुन रहे हैं, और अगला गीत जो हम सुनने वाले ये लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का गीत है पल पर हर पर, और ये गीत आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के फेवरेट पर्सन, ठीक है, आपके खास लोग के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं पल पल हर पर।

हर पर लगे रहो मुन्ना भाई मूवी से था, और यहाँ हम अगले गीत की ओर जाने वाले हैं, और ये है बदलापुर से जुदाई। और ये गीत हम अपने दोस्त जो देश के बाहर में रहते हैं, ठीक है, मैरी के लिए, और दत्ता जी के लिए जो अभी कतार में रह रहे हैं दोहा में, और उनके लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं, ये है जुदाई।